0: हुन्छ। हाम्रै चौताराको पुरानो बजारसँगै रहेको कृष्ण मन्दिर छेउमा पुरानो विश्वासिलो भरपर्दो बेखा रत्न साके ज्यासल सुनचारी पसल छँदैछ नि।
1: प्रोप्राइटर वीरेन्द्र रत्न साख्य 011-620-51 9841-5764 चौताराको पुरानो बजार कृष्ण मन्दिर सँगै।
2: Ladies and gentlemen, you are listening to Hillow FM 89.6 MHz.
3: राहे मोहब्बत में कुछ कड़ियां ऐसी होती है जो जुड़ने पर ही समझ में आती है। मुझे तुम्हारा आज भी इंतजार है और मुझे यकीन है कि तुम जरूर आओगी।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: यो हो हेलम्बु एफएम 89.6 मेगाहर्ज।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइथी नला विश्वासी चमक बसुगो परमेश्वर से सेमनिबा काते दमसु मुला जय मसी तथा नमस्कार लासु फ्याफुल्ला स्पार्क माई फेथ तथा विश्वासी चमक बसुगो अङ्क 87 रङ्गित स्वागत मुला न वियोग तामाङ रङ्ब जोशी रङ्गदेन छुटकारला ज्ञान गवाही जुमुला रङ्द हरङ्ब नोङमुला तिगा रङ फेनिगा देला लाग्रे जखेन उत्साहित मुसुला वा चुसे रङ्द रङ्ग लाग्रेन उत्साहित सुमुला रङ्गिदाङ प्रश्न मुला थेनन परमेश्वर जोशी ताम गदे थेनिगा देला लाग्रे लसुजी रो थक्कन थेनन परमेश्वर मुसुला जोसे रङ्दा माया लसुमुला जति परमेश्वर से थेनी गदिता माया लसुमुला थेन दे रोसे रङ्ला लाग्री एन ओत्तेनन लसुला जति परमेश्वर से थेनी गदेर लाग्री लसुजी एसैया 54 अध्याय 10 गाङ कदे योङ योङ ताजी थेन दे गाङ कदे हटप ताजी तासै एन एला लाग्री गाला अटुट माया हटप लसेला आरे नमी नाला शान्तिला करार भङ्गा ताला एदा कृपा लसुला परम प्रभु सुङला जब रङसी रङला लुइरे रङसी आशा लामा परिणाम आमरङ मुस्युला चुला मतलब छु आइन बकि परमेश्वर से रङदा ठ्रास्यु मुबा वा परमेश्वर से रङदा मैस्युबा मुला वा रङ रोला लाग्री महत्वपूर्ण आरे मिसे सन्दो मिग देदा चुरङ व्यवहार लजिबा हमला तसै परमेश्वर से रङला जत्तु गरेदा हाइमा चुरुङ्बा व्यवहार अलास्यो मुला एसैया 41 अध्याय 10 चु कारण थक्लास्युगो तिग्दविषम न एनन मुला निरोत्साहित थलास्युगो तिग्दविषम न एला परमेश्वर हिनमा न एदा बाङबा सोला न एदा सहायता लाला नला धार्मिक तला दाहिने यासे न एदा समाप लाला दत्ते परिस्थिति रङला पछाडि अमरङबारी हमला रङ कठिन दुई ग्याम गुजब तबारी हमला रङला परिस्थिति रङमन तसै हाइमदमन कृतज्ञ तस्युगो हाइमदमन स्वीकार लसुगु कि परमेश्वर से राङदा माया लसुमुला रो राङला आवा मुसुला थेन्दे परमेश्वर से राङला हेर्चा लाभ प्रतिज्ञा लसुमुला थेन्दे रङसे बिताइदिव दिन गदे दानुन ताम आरे जुन रोसे राङला लुइरी राङला दुई तालिला अनुसार सम्बोधन लस्युसेला आरे थेन्दे समाधान लस्युसेला आरे फिलिपी 4 अध्याय 11 इन्ज 13 नद खाच तसी बिसी पङबा आइन तिग्द विषम जत्तोन दुईरी सन्तोक लसी चितो मुला बिसी नद था मुला ओछे खाच तगै अतगै खरङ लसी ब्रो ब्रतोला बिसी नद था मुला थेरङ लसिन चमेङगै अचमेङगै लान मुसे अमुसे जत्तोन दुईरी सन्तोक लसी चितो मुला बिसी नद था मुला ख्रिस्टे पिनबा शक्ति गदिनोन नाइचु जम्मन ताम लाबरी खामला दत्ते परिस्थिति याङला पछाडि मुबकी आरे परमेश्वर सेमुला कि याङ जबा क्याम्री मनोवृत्ति सोभरी कायम थाल्ला आज अब परिस्थिति ग्याम व्यवहार लामा सन्तुष्ट तसेला रहस्य विवाह यीशु ख्रिस्ट ग्याम छामला याङला एकता मोसेबा हिन्बा परमेश्वर ग्याम याङनेन याङसे सामना लजिबा जम्मन अवरोध गदे दा पार लबरी हम्बा देन अधिकार निदोन मुला कलसी 3 अध्याय 16 इन्ज 17 एनी गदेला सेम सदन ख्रिस्ला वचन से प्लिंसी गिक सेन गिग्दा रङला जम्मन ज्ञान बुद्धि से लोगो ओछे परमेश्वरला आत्मा से पिनबा वै सेमहेन से गोसी परमेश्वर दा धन्यवाद पिङ्गो एनी गदेसी खजी भई के दिन ताम लसै प्रभु येशुला मिन ज्ञान सेन लाउ ओछे प्रभु येशु ज्ञान सेन परमेश्वर आवादा धन्यवाद पिनगो चुसे रङला परमेश्वरला रूपी सेवा लावन प्रत्येक दिन शोभा छनोट लस्युगो परमेश्वर दा रङला ज्ञान निर्देशन लबरी पिन्छुगो थेन्दे रङला लुइरी रङलन परिस्थिति करे हामायन कृतज्ञ सुस्युगो थेन्दे निश्चित रूपी रङसे रङला लुइरी उचित दुइरी परमेश्वरला गेन आशिष कते अनुभव लस्युला भजन संग्रह 136 पदरी एरङबी मुबा स्वर्गला परमेश्वर दा थुजे छे पिङ्गो तिक देविसम परमेश्वरला प्रेम अनन्त काल दोना चलता मुला आमेन। परमेश्वर से रङले जीवन रे प्रशस्त आशिष पिन्छु गई। प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङ्ला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ। कार्यक्रमलाई बारे रे रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353। धन्यवाद। हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
2: Time check. It's 7 p.m. अहिले